0: चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पुरजोर मुखालफत क्यों करी, लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया, इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The Grand Old Party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.

0: not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
1: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
3: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेंपरेरी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
4: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
5: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट Not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
0: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
5: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
2: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
6: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள், எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
7: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்ட்ல இருக்கவங்கள நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற எங்களுடைய மோடு வேற.
8: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினுடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
9: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும். டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
2: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwant Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
10: Dekho, mainu lagda hai ki ilzaam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhone bebuniyad ilzaam laaye ne unna te dat ke samna karan layi puri taiyar ha. Main na pehla ghabrai si na main ajj ghabrauni ha. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
11: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
12: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि CMR को और CM रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात.
2: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.

0: कमेटियां तो बहुत बनाई है। एक बात आपके माध्यम से कहूं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू शुरू में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी, आज वो योजना कहाँ है? कमेटी बना देना बहुत बढ़िया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहावत है, कमेटी बना देना ये अपने आप में द्योतक है कि आप उसको टाल रहे हैं। युवाओं के मैसेज को समझिए, उनको एजुकेशन का आर्किटेक्चर बेहतर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोस ब्लूप्रिंट और एश्योरेंस चाहिए, और ये दोनों आपकी कमेटी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, प्राधिकार में नहीं।
1: मेरी समझ से जैन जी ही नहीं, जैन उल्फा की भी बस जो है सत्ता मिस कर चुकी है। इन नौजवानों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके बड़े सवाल हैं, रोजगार का सवाल है और शिक्षा में सुधार का सवाल है, और जैन उल्फा अब जगह जगह इसीलिए इन उन सवालों को उठा रही है, अपने स्कूलों के, अपने पाठ्यक्रमों के, शिक्षकों की कमी के। तो ये है, और हमने भी कांग्रेस पार्टी के तौर पर तय किया है कि हम अपने यहाँ भी कुछ जो सवाल उठे हैं उन सवालों का अपनी सरकारों से भी समाधान करेंगे, और आगे पार्टी के रूप में भी कुछ हम वो बनाएंगे आगे का रोड मैप जो है।
2: आगे चल करके हम सब जैन जी को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि जैन जी जिसको नेतृत्व संभालना है वो सक्षम बने और वो उस नेतृत्व के लिए तैयार हो। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सेवा से संकल्प, इसको साथ में लेते हुए जैन जी देश के निर्माण कार्य में लगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसी को लेकर के रणनीति तैयार।
3: वो अपने पार्टी की ओर से कुछ भी कर सकता है, इसे कोई फर्क नहीं होगा। जैन जी के कोई विश्वास नहीं है इस पर बीजेपी के ऊपर।
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
6: Let's just switch tracks now to Tamil Nadu. The TVK has stepped up its pitch when it comes to the chief minister as a potential face of a prime ministerial candidate, with party leaders protecting, basically really putting out that front as far as protecting him for a larger national role. The Tamil Nadu minister Wilson has said that Vijay is headed towards the national political stage, signalling confidence in his growing political profile. Congress has pushed back against TVK's Vijay for prime minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next prime minister and taking a aim at the party's growing national ambition. So clearly the Congress party and the TVK not on the same page as far as the political aspirations go in the future.
7: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க, நேஷனல் லெவலில், நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு, வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட், அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
8: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் ஈடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும்

0: கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்ல இருக்க நாங்கள், அவர்களுடைய மோடு வேற எங்களுடைய மோடு வேற.
1: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
2: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
3: Let's just get you breaking news coming in, and it is enforcement director that's conducted raids at the IAS officer Gyanendra Kumar's Bengaluru residence in KPSC recruitment case in Bengaluru. So this is a case that is dating back a while. The officer's role in this case is under scrutiny. The ED has not specified if had any preliminary evidence to search him. Do remember that they had reached his residence on Sunday. They were made to wait for 2 hours outside before they could go inside, and eventually when they went inside there was another hurdle that the house door was locked. They had to get a local key maker to open the door and go inside. Neighbors were summoned as witnesses to that very process, and this is with similar raids that have also been conducted. There were searches that took place at his house in Bareilly as well. So do remember that he served as a controller of examination in the KPSC from February of 2024 to March of this year before being transferred as the director of MSME in June. And the political row over the minister is set to only intensify, with the opposition planning a protest demanding his resignation. The BJP MLAs will march to the Vidhan Sabha in order to mount pressure on the DK Shiv Kumar government. And this is the demand as far as the centre is concerned. So the demand centres on the Valmiki Development Basic Corporation scam, over which Nagendra has resigned as minister in 2024. The CBI and the ED probes are still ongoing, as Nagendra has been named in the charge sheet. The BJP has alleged that Nagendra has not received a clean sheet and has demanded a removal from the cabinet of DK Shiv Kumar. But then we have the chief minister, who has hit back saying that the opposition can do whatever they want, with the opposition demanding the exit of Nagendra in the Valmiki scam that is once again at the center of the political clash. And switching tracks now to Punjab, a retired High Court judge has levelled allegations against the wife of a Bhagwant Mann, Gurpreet Kaur, claiming that she attempted to basically, demand a bribe of 5 crore rupees, and this was in order to hush up a rape case. The rape case victim has approached the Punjab and Haryana High Court seeking court intervention over the investigation. The victim has sought a CBI probe, alleging that the state police investigation was not impartial. The allegations centre on a claim that there was an attempt to suppress or influence the case. The retired judge has alleged that 5 crore rupees was sought in connection with the case, and the allegations involve the wife of the current chief minister, Gurpreet Kaur, who has outrightly rejected the allegations as baseless and has issued a legal notice to the retired judge over the claims that have been made.
4: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
5: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स या तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
6: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
3: And with that, we're slipping into a very short break. On the other side, we're going to get you S. Jaishankar's visit to Russia. That and a lot more. Stay with us.
7: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सक्का राजा आ गया मसाला।

0: Celebrate Raksha Bandhan with Samsung Galaxy. Own the Galaxy S series starting at just rupees 73 per day and the Galaxy A series starting at just rupees 50 per day.
1: New feels good.
2: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: plans for a dedicated Gen Z outreach program. The outreach will include direct interactions when it comes to the generation, including engagement with students. Opposition parties have also, as far as party members are concerned, they've gone ahead and attacked that outreach of the BJP when it comes to Gen Z, claiming young voters have lost faith in the party. The Congress has claimed that Gen Z is seeking a change and will not be supporting the Modi government in elections coming up in 2029. The BJP says that Gen Z will be central to its vision of a developed country. The party says it really wants to empower young Indians and will be giving them a greater role.
1: कमेटियां तो बहुत बनाई है। एक बात आपके माध्यम से कहूं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू-शुरू में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। आज वो योजना कहां है? कमेटी बना देना बहुत बढ़िया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहावत है, कमेटी बना देना ये अपने आप में द्योतक है कि आप उसको टाल रहे हैं। युवाओं के मैसेज को समझिए, उनको एजुकेशन का आर्किटेक्चर बेहतर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोस ब्लूप्रिंट और एश्योरेंस चाहिए, और ये दोनों आपकी कमेटी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, प्राधिकार में नहीं।
2: मेरी समझ से जैन जी ही नहीं, जैन उल्फा की भी बस जो है सत्ता मिस कर चुकी है। इन नौजवानों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके बड़े सवाल हैं, रोजगार का सवाल है और शिक्षा में सुधार का सवाल है, और जैन उल्फा अब जगह जगह इसीलिए इन उन सवालों को उठा रही है, अपने स्कूलों के, अपने पाठ्यक्रमों के, शिक्षकों की कमी के। तो ये है, और हमने भी कांग्रेस पार्टी के तौर पर तय किया है कि हम अपने यहाँ भी कुछ जो सवाल उठे हैं उन सवालों का अपनी सरकारों से भी समाधान करेंगे, और आगे पार्टी के रूप में भी कुछ हम वो बनाएंगे आगे का रोड मैप जो है।
3: चल करके हम सब जैन जी को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि जैन जी जिसको नेतृत्व संभालना है वो सक्षम बने और वो उस नेतृत्व के लिए तैयार हो। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सेवा से संकल्प, इसको साथ में लेते हुए जैन जी देश के निर्माण कार्य में लगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसी को लेकर के रणनीति तैयार।
4: वो अपने पार्टी की ओर से कुछ भी कर सकता है, इसे कोई फर्क नहीं होगा। जैन जी के कोई विश्वास नहीं है इस पर बीजेपी के ऊपर।
5: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
6: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: Let's just also get you more breaking news coming in, and this is in regard. In fact, before we talk about the breaking news, we have Rishika, my colleague, joining us. Rishika, of course, is the BJP versus Rahul Gandhi. Who really has a stronger Gen Z strategy, as both sides are really stepping up their youth outreach, trying to woo the young voter?
7: Well, Divya, you know, Gen Z is in fact, if not the most important, then certainly one of the most important factors in the upcoming elections, and all the political parties understand that, and that is why, be it the BJP, be it the Congress, or be it the other parties, all of them have stepped up their Gen Z outreach program. If we talk about the BJP specifically, Well, in Nitin

0: घंटे सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, इसके कारण जन कल्याण के काम रुक जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, जातिवाद भाषावाद जैसी बुराइयों को बल मिलता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी रह जाती है, प्रशासन 24 घंटे इसी काम में जुटा रहता है। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज संतों ने संकल्प लिया है हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर। मुझे विश्वास है कि संत जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है।
1: सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे।
2: Let's just sort out, get you more news coming in at the moment. A retired High Court judge has leveled allegations that this is against the wife of the Chief Minister of Punjab. Yes, we're talking about Bhagan Maan's wife, Gurpreet Kaur, who claiming an attempt was made to scuttle a rape case involving a bribery demand that was being made to the tune of 5 crore rupees. The rape case victim has approached the Punjab and Haryana High Court seeking court intervention over the investigation. The victim sought a CBI probe alleging that the state police investigation was not impartial. The allegations center on a claim that there was an attempt to suppress or influence that very rape case. The retired judge has alleged that there was a bribery amount that was being sought, and that is the allegation that is being made against the wife of the Chief Minister of Punjab. She, on her part, has rejected the allegations, calling them baseless, and has issued a legal notice to the retired judge over the claims that have been made.
3: देखो, मैनू लगता है कि इल्ज़ाम लाने बहुत सौखे ने, बेबुनियाद गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, तो मैं जेड़े भी उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लाए ने उन्होंने डट के सामना करने लिए पूरी तैयार हाँ। मैं ना पहला घबराई सी ना मैं अच घबरा, तो मैं उन्होंने चैलेंज करती हाँ कि जेड़े भी वो गल्लां कर रहे हैं उन्होंने आप दियां प्रूफ कर लैन, नहीं तो फिर अपने लीगल जेड़ा भी नोटिस ली या लीगल कार्रवाई लिए तैयार रह।
4: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्ज़ाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स जा तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
5: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी, अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: Switching tracks now to, in fact, a fresh twist that has emerged in the this is the family death case that has taken place. Do remember 3 members of a family that jumped off this cliff, the boy who was trying to take his own life and the father who was trying to stop him from doing so, the mother who was pleading and begging the son not to take that drastic step, but seeing that the father and the son had fallen to their death is when she decided to jump off that cliff as well. Now, we have new details that have come about that are raising questions over whether the tragedy really took place because of an iPhone. Do remember that, initial reports suggested that he couldn't pay the EMI of a new iPhone that he had recently bought, is why he decided to take his own life. Now, there seems to be a deeper family feud that may have really been behind this all. The 18-year-old Kunal, who had also allegedly attempted suicide not once but exactly on that same very hill last year, but had managed to be, he was rescued by the police at the time. They had convinced him to get off that hill. Now, meanwhile, an old video of the mother has gone completely viral, in which she is seen emotionally accusing someone of denying her family their rightful dues. Reports are suggesting that the father often stayed away from the house and had been out of town for the last 3 months. Another key angle under scrutiny is a possible property-related family rift. Sources are suggesting that the relationship between him and his parents wasn't too good, and following his elder brother's death, that might have contributed to his decision to take his life. He had attempted to do the same last year as well, and the police were then successful in persuading the teen to drop the idea of ending his life. However, this time around, they failed.
6: माझा आणि माझ्या मुलाचा हक्क खाल्लास, प्रॉपर्टीसाठी भावाचं आणि आई वडिलांचं कधी जमू दिलं नाही, माझा हस्त खेळता संसार तू उद्ध्वस्त केलास, माझ्या संसाराचे तू विष कालवलं, माझ्या मुलाला त्याच्या वडिलांपासून दूर केलं. हे जे पाप आहे ना, येणाऱ्या 7 पिढ्या तुझ्या फेडतील, हा शब्द आहे माझा.
2: Break news coming in of an orthopedic doctor in Maharashtra's Thane who's faced verbal as well as physical abuse at the hands of a patient's son. The accused father visited the OPD at the hospital for a medical checkup. Even as the doctor addressed the patient's queries, the accused began using disrespectful and aggressive language. He allegedly hurled abuses and attacked the doctor inside the OPD. The Kalyan police have registered a case against the accused, Vineet Jayant, who has now been accused of verbal abuse against the doctor inside the OPD inside this hospital in Kalyan.
7: कल रात को 10:45 बजे मैं पेशेंट को चेक कर रहा था. पेशेंट का नाम है जयवंत देशमुख. उसको पसली में चोट आई थी, फ्रैक्चर आया था और फॉलोअप के लिए आया था. पेशेंट ठीक था. पेशेंट को सब एक्सप्लेन किया क्या क्या, कैसे पट्टी करना है, कैसे दवा लेना है, कैसे कैसे उसको पट्टी रखना है. बट उसका लड़का वही चीज़ मेरे को 10-10 बार पूछ रहा था. मैंने उसको सब एक्सप्लेन किया. तू तड़क में बात कर रहा था, मैं तू भी उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वही चीज़ बार बार पूछ रहा है. मैंने बोला कि वही चीज़ बार बार क्यों पूछ रहे हो और मेरे को तू करके क्यों बोल रहे हो. तो बोल रहा है कि मैं तू क्या बड़ा डॉक्टर हो गया क्या, ऐसा करके मेरे को बोला. और फिर जैसा वो बाहर गया और मेरे को गाली देने लगा. फिर मैं बोला मेरे को गाली क्यों दे रहे, फिर आके मेरे को मारने लगा.
8: आगे क्या किया आपने?
7: आगे मैंने 112 को कॉल किया, पुलिस आए, मैं उनके साथ गया उधर रेफायर के लिए, इसके लिए फाइल करने के लिए. मेरे साथ कैंपस वर्क के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आए, उन लोगों ने हेल्प किया और एफआईआर नोट की.
2: Case has been registered against Vineet Jayant Deshmukh because he assaulted this doctor inside the OPD in Kalyan. We are going to keep tracking that story. For now, slipping into

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
3: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: Meetha. या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
5: We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms. We want to accelerate the pace of economic catch-up.
6: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
7: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of
8: the...
9: रंग बना रहे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरी राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: Jante hain, main Elite Matrimony kyun recommend karta hun? 17 years of experience, largest database of elite profiles, aur 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: investigation in the Chennai Central, and they also examined CCTV footages and found two suspects carrying same trolley, same color trolley in the in Chennai Central railway station boarding train which towards Agra city. And also they found suspects living in Guduvanchery, outskirts of Chennai. They informed local police, and immediately local police also confirmed the two suspects whereabouts in Guduvanchery residence, and they inspected the, they made a search inside the residence in a Guduvanchery. They only, they found a shocking details where they found a few body parts in a vessel type structure. Immediately police recovered those body parts and also informed the Agra police, and immediately they found the details, they found who passed away, and also based on a deceased son complaint, missing complaint, they registered a missing complaint. And also now more investigation is going on to find the two suspects who were absconding now, and more investigation is going on. NDTV spoke to police official who is investigating the case, so he told us saying that so far based on a scientific evidence we are trying to confirm the body parts in Agra railway station and also in Guduvanchery, whether those two body parts are same or belong to same person only, and the reason for murder also is being investigated. So we'll all get right. A clear info. They formed a special team also to investigate, to enquire the incident, so we'll get a clear information once the police conclude the investigation, Gargi.
1: That's right. Thanks so much, Vijay Gopal, for joining us with all those details. So the case of this red suitcase in which remains of a woman were found. Well, news now from Uttar Pradesh, where a political controversy has now broken out. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered a political row, with the event taking place during the month of Sawan. The event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, held to welcome Congress State President Ajay Rai. The BJP has hit out at the Congress, calling the serving of fish during Sawan an insult to Sanatan Dharm and Sanatanis. Meanwhile, Congress justified the eating of fish and said, what is wrong in eating fish? And fish is part of the Nishad community tradition.
2: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट, मेरे उस वक्त बंद करो. अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, भारतवर्ष में 1926-1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं. और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा. भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा. ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार, अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
3: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग हैं सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं. कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं.
4: अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं, और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष में हनुमान जी का दर्शन भी किया, और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है. इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है. वही मार्ग कांवर यात्रियों की मार्ग है जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है.
5: शर्म आती है कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही है ये सामने आ जाता है. मुंह में राम बगल में छुरी, आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं. ये पत्रकार समाज और सनातन रक्षक संघ सब पर पैनी निगाह रखे हुए है. आप खाओगे तो हम पोल खोलेंगे, क्योंकि 27 में आपकी दाल नहीं गलनी है, पूरा विपक्ष धराशाही होगा.
6: कांग्रेस हैज गॉट hatred towards Sanatan, that is for sure. Now during the sacred month of Sawan in Ayodhya, the holy city of Bhagwan Shri Ram, a Congress event attended by its Uttar Pradesh President Ajay Rai, and fish is served there. So on one hand, Congress leaders visit temples, recite Hanuman Chalisa and seek the blessings of Ram Lala, and on the other hand, such complete insensitivity is displayed at their own political program. So whom they want to please?

0: कांग्रेस में आर्ग्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट ईटिंग फ्रेश ड्यूरिंग सावन. एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑफ कोर्स इट डजंट. बट एवरीथिंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय व्हाट इज लीगली प्रोहिबिटेड. सम थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय रिस्पेक्ट, ट्रेडिशन एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फेथ ऑफ मिलियंस. एंड वी हैव सीन दैट टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन कांग्रेस हैज इंसल्टेड and has always tried to abuse and crush Sanatan. One more example is added.
1: All right, news now from Punjab, where a retired High Court judge has leveled a serious allegations against Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's wife, Gurpreet Kaur, claiming an attempt was made to scuttle a rape case involving a 5 crore demand. The rape case victim approached the Punjab and Haryana High Court seeking a court intervention over the investigation. The victim sought a CBI probe, alleging that the state police investigation was not impartial. The allegation centered on a claim that there was an attempt to suppress or influence the rape case. The retired judge has alleged that 5 crore was sought in connection with the case, with allegations involving Chief Minister Bhagwant Mann's wife. Gurpreet Kaur has rejected these allegations as baseless and has issued a legal notice to the retired judge over these claims.
2: देखो मैनू लगता है कि इल्जाम लाने बहुत सौखे ने, बेबुनियाद गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, ते मैं जेड़े भी उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लाए ने उन्होंने डट के सामना करने लिए पूरी तैयार हाँ. मैं ना पहला घबराई सी ना मैं अच घबरा, तो मैं उन्होंने चैलेंज करती हाँ कि जेड़े भी गल कर रहे हैं उन्होंने आप दियाँ प्रूफ कर लें, नहीं तो फिर अपने लीगल जेड़ा भी नोटिस ली या लीगल कार्रवाई लिए तैयार रहें.
3: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है. पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं. और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स जा तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा.
4: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी, अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को. दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं. ये तमाम
5: पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, कट्टर बेईमान साबित हुए हैं. और अब तो सीएम हाउस वो भी जो है लोगों के निशाने पे आ गया है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्होंने नोटिस दिया है मिसेस भगवंत मान को अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि फॉर्मर जस्टिस उन्होंने ये मामला सारा उठाया है, और कि भी 5 करोड़ रुपए जो है लेने की बात हुई है एक रेप केस को दबाने के लिए. और कितनी विडंबना है कि एक महिला ही महिलाओं के खिलाफ.
1: In other news now, the debate over one nation, one election intensifying again, with the government pitching simultaneous polls. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has argued that frequent elections hamper development, saying political parties remain constantly engaged in electioneering and public money is repeatedly spent on elections. Meanwhile, the Joint Parliamentary Committee examining the ONOP bill has stepped up consultations. The panel is meeting legal experts and other stakeholders, including former judges. But the proposal continues to face opposition. CPI MP Peer Sandosh has called ONOP impractical, alleging that the BJP is using the debate to divert.

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा.

0: Union Government to expand the existing airport in Chennai in Meenambakkam area.
1: All right. Thanks so much, Vijay Gopal. And do stay on with us. Let's just take our viewers through the concerns and the reasons the Chief Minister has now dropped this proposed airport project. The project harms agricultural land and farmers. Remember, that was one of the big reasons, a threat also to the water bodies and resources in this area. And that is the reason that the locals had been opposed to this project. The third reason is the environmental damage concerns that were raised if this project indeed comes up in this area, which has wetlands, that has water bodies, farmers' land concerns. The locals were protesting, saying this is very fertile agricultural land that is here where this proposed project would come up, impact of land acquisition on locals. It had become a huge issue with the villagers. Concerns over ecological damage, again, going back to the fact that there are water bodies over here and that there was going to be an ecological risk. Also, the risk to the rural ecosystem is something that the villagers had been raising, that they had a robust ecosystem over there, a robust economy over there. Demand for farmer-centric solutions is something also that was being raised, and call for alternative project site is something that the government has now promised, and they've also promised to balance growth. While yes, industry concerns are there and there is a need for industrial growth, but also to balance that with ecology and environmental concerns. Well, moving on to and staying with news from Tamil Nadu, but in other news, Stalin has lashed out at Tamil Nadu Chief Minister Vijay. MK Stalin, DMK chief, has hit out at the Vijay government, saying today the youth should understand the role of Dravidian principles and who is the reason for today's situation. He says that they fail to understand it. The change in Tamil Nadu has ended with disappointment because of mistake made by lack of people. Crores are now affected and this has to change.
2: இந்த நிலை வருவதற்கு காரணமாக இருந்ததை யார் என்பதை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறி இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
1: Let's go across to Vijay Gopal for more on this story. And Vijay, take us through, what MK Stalin was saying there. He is blaming the youth for getting carried away and saying that, now the people of the state are suffering because of this, because of the new government.
0: Kagi, that's right. MK Stalin was part of a wedding event of a DMK party functionary where he delivered a speech. He criticized TVK government for various issues. He even pointed out the importance of Dravidian principles in Tamil Nadu in terms of giving prioritized education for everyone and ensuring social justice in Tamil Nadu. He points out that youth should understand the role of Dravidian principle, which they have contributed to the state Tamil Nadu. He also point out the recent poll defeat in 2026, saying that because of the mistakes made by lacks of people, now today crores of people are getting affected because of this. And he also pointed out TVK's poll slogan as a change for Tamil Nadu. He said today change has happened, but it has ended with a big disappointment for the Tamil Nadu people. So in a way, Stalin is criticizing TVK government failure over what he call as a failure over various issue. We have to wait for how TVK going to respond to DMK chief MK Stalin.
1: All right, thanks so much, Vijay Gopal, for joining us with those details. So Stalin, they're hitting out at the TVK government. Meanwhile, staying with more news coming in from Tamil Nadu, the TVK has stepped up its pitch for Vijay as a potential prime ministerial face, with party leaders projecting him for a larger national role. Tamil Nadu Minister Mary Wilson has said Vijay is headed towards the national political stage, signalling confidence in his growing political profile. However, our ally in the state, Congress, has now pushed back against this idea, the TVK's Vijay for PM pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next prime minister and taking aim at the party's growing national ambitions.
3: ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
4: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க மவுண்ட மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
5: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
6: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And more news from Tamil Nadu. A viral video triggered a political row after it was wrongly claimed to show Minister S. Kirtana. The minister has denied being the woman in this video, who can be seen wearing a short black dress. But she also hit back at this trolling over this video, calling it a regressive mindset, alleging that political opponents are now manufacturing a narrative, also calling misogyny the oldest weapon of those who have nothing substantive to positively contribute. Kirtana went on to say that the woman's appearance should not be subjected to any kind of public trial, and questioned why there was political hysteria over this video. And then directly addressing the woman in the video, the Tamil Nadu minister also said that you look stunning, adding that she had gotten dragged into this simply due to a passing resemblance. The DMK on its part has also slammed the trolling, calling it an attempt to degrade women.
7: பொய் பிரச்சாரம்னா எப்படி எல்லாம் வந்து சாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இப்ப தினமும் சனி ஞாயிறுனா அவங்களோட வேலையே இதுதான். இன்னைக்கு நான் பொய் பிரச்சாரத்தை காமிக்கிறேன், நீங்களே சிரிப்பீங்க. யார் போட்டிருக்கா தெரியுமா? அது இபிஎஸ் 24/7 ப்ளூ டிக் கூட வந்து போட்டிருக்காங்க. யாரோ ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு அரகரை ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கார்ல ஏறாங்க, இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இது யார் என்று தெரியுறதா? எதுல இபிஎஸ் 24/7 ஒரு அபிஷியல் பேஜ். ஒரு பெண்ணை எப்படியெல்லாம் இழிவுபடுத்த முடியுமோ, திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி இப்ப இன்டர்நெட் எல்லாம் இப்படிதான் போடுறாங்க.
1: Now some tragic news from Maharashtra, where a massive fire broke out in a NICU of the district women hospital in Maharashtra's Amravati. That's the neonatal ICU, killing 3 newborn babies. The fire reportedly broke out around 3:30 a.m. on the third floor after a ventilator explosion. At the time, there were 39 infants were present in the ward, and doctors, nurses and hospital staff quickly disconnected the equipment, evacuating the remaining babies from the flames. 6 critical infants have been shifted to a nearby super speciality hospital, while Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the deaths. Meanwhile, a political blame game has also erupted. NCP SP leader Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence, demanding a thorough probe and the strictest action. Congress also questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago, raising questions over possible equipment or electrical faults.
8: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
9: लास्ट ईयर का जो फायर का ऑडिट है वो निश्चित हुआ है, और इस ईयर के फायर ऑडिट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के पास, उसके डॉक्यूमेंट भी देखे मैंने, तो फायर ऑडिट हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फायर ऑडिट साल मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। जांच हमने चालू कर दी है, तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे।
10: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
11: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्युमुखी वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
12: यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये, इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पर देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
13: Outcome of negligence on the part of municipal corporation. They always claim that we have a triple government, we have a double engine government, triple engine government. But what is happening through around the Maharashtra, these kind of things are happening. Somewhere snake bite is happening. Somewhere students are dying of poisonous food. And now this has happened. What happened to the audit when the same thing has happened in 2021-22 at Bhandara district hospital, where 10 neonatals have died of such same fire? What happened to the audit by corporation? What happened to the administration's negligence? These kind of things must be reviewed and proper action should be taken against this, so that these kind of things not happen in the future.
1: In other news, a chlorine gas leak triggered panic in Nagpur's Godhni area, with at least 40 people hospitalized after being exposed to the toxic gas. Now, this leak took place at the Godhni Nagar Panchayat water purification plant, affecting both employees working at the facility and residents who were living around this facility. Remember, chlorine is used in water purification. Around 8 to 10 plant employees and 20 to 25 local residents are among those affected and have been taken now to hospitals for treatment. 4 to 5 people have even been admitted in ICU, while others are undergoing treatment for breathing difficulties and other symptoms following the gas exposure.
14: सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहां पर पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए, अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं।
15: एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो।
16: 40 लोग एडमिट किए गए थे जिसमें अब तक के 12-13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3 लोग अभी भी आईसीयू में, और पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद रात में 12:30 बजे से कर रही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहा है जो यहाँ पे सीपीआर एसडीआरपीएफ जो यहाँ पे काम कर रही है, तो ये भी रात से यहाँ के सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, साथ ही जो ओसीडब्ल्यू है और यहाँ पे फायर एनएमसी, जो एनएमसी का डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, वो भी कर रहा है।
1: Rahul Gandhi's call to smash the patriarchy has triggered a political war of words between the Congress and the BJP. Speaking at his Chhatro Ki Goonj event on the 22nd of August, Rahul Gandhi said that patriarchy suppresses and controls women. He further called for an end to the system and he urged women to be loud, proud and fight for their space in society, not to be anybody's, you know, be introduced as just somebody's daughter or wife. The BJP now has hit back, questioning the Congress party's approach towards women's political representation. The BJP challenged Rahul to support 33% women's reservation law and questioned how the Karnataka government has no women in its cabinet. Congress countered the BJP by alleging that the RSS had opposed the constitution and advocated for the Manusmriti.
17: Congress party ke ek ahem neta ne महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
18: राहुल गांधी should first trash the hypocrisy before he waxes eloquent slogans like smash the patriarchy, because the track record of the Congress party is really dismal when it comes to women empowerment. There are zero women ministers in both Karnataka and Himachal Congress-led governments.
19: Women have been very much liberated, and India as a country, immediately after independence, after inducting our constitution, we were one of the pioneers in giving universal suffrage, one person, one vote, where women were also given vote, where women were also equally treated when it comes to voting. Now we are in a stage where we have to take women to the next stage, where women are very much well equipped in terms of education and skills. And that is why Rahul ji has clearly boosted the motivated women to get out of the clutches of men and be more independent.
1: With Gen Z emerging as an important political constituency, parties are now stepping up efforts to engage with young voters amid growing youth-led political activism and protests. BJP President Nitin Naveen's new team, in fact, discussed plans for a dedicated Gen Z outreach program. The outreach will include direct interaction with Gen Z, including engagement with students. But opposition party members have attacked the BJP's Gen Z outreach, claiming young voters have lost faith in the party. The Congress claim that Gen Z is seeking change and will not support the Modi government in the 2029 polls. The BJP said Gen Z will be central to its vision of a developed India. The party said it wants to empower young Indians and give them a greater role.
20: Committees to bahut banayi hai. Ek baat aapke madhyam se kahun, Pradhanmantri ji ne shuru mein ek sansad adarsh gram yojana shuru ki thi. Aaj wo yojana kahan hai? कमेटी बना देना बहुत बढ़िया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहावत है, कमेटी बना देना ये अपने आप में द्योतक है कि आप उसको टाल रहे हैं। युवाओं के मैसेज को समझिए, उनको एजुकेशन का आर्किटेक्चर बेहतर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोस ब्लूप्रिंट और एश्योरेंस चाहिए, और ये दोनों आपकी कमेटी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, प्राधिकार में नहीं।
2: मेरी समझ से जैन जी ही नहीं, जैन उल्फा की भी बस जो है सत्ता मिस कर चुकी है। इन नौजवानों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके बड़े सवाल हैं, रोजगार का सवाल है और शिक्षा में सुधार का सवाल है, और जैन उल्फा अब जगह जगह इसीलिए इन उन सवालों को उठा रही है, अपने स्कूलों के, अपने पाठ्यक्रमों के, शिक्षकों की कमी के। तो ये है, और हमने भी कांग्रेस पार्टी के तौर पर तय किया है कि हम अपने यहाँ भी कुछ जो सवाल उठे हैं उन सवालों का अपनी सरकारों से भी समाधान करेंगे, और आगे पार्टी के रूप में भी कुछ हम वो बनाएंगे आगे का रोड मैप जो है।
21: आगे चल करके हम सब जैन जी को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है, कि जैन जी जिसको नेतृत्व संभालना है वो सक्षम बने और वो उस नेतृत्व के लिए तैयार हो। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सेवा से संकल्प, इसको साथ में लेते हुए जैन जी देश के निर्माण कार्य में लगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसी को लेकर के रणनीति तैयार।
22: वो अपने पार्टी की ओर से कुछ भी कर सकता है, इसे कोई फर्क नहीं होगा। जैन जी के कोई विश्वास नहीं है इस पर बीजेपी के ऊपर।
23: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
24: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
1: Now, speaking of the youth and Gen Z, the war of words between yoga guru Ramdev, actor turned BJP MP Kangana Ranaut, shows no sign of abating. Remember, it all started with her comments on Gen Z. Baba Ramdev has now responded on this public spat with the BJP MP, saying that he does not wish to comment on her any further. The yoga guru said that people who know Swami Ramdev is and what his contribution has been. Now, this comes after a sharp exchange between the two. Ramdev had earlier questioned Kangana's generation gutter remarks, describing it as a sign of a disturbed mind. Remember, she had made that gutter generation remark against the Gen Z. Ramdev asked, what about her past deeds? What were they like? And questioning, what was her youth like? Now, Kangana Ranaut hit back on the 19th of August, asking Ramdev not to daydream about her bedroom and certainly not to give her character lessons. She also claimed her character was better than his and said that there were no fraud reports against her, and took a dig at him over the Supreme Court proceedings involving Ramdev. Ramdev's latest remarks now come as the war of words between the two seems to be continuing.
25: Jin logo का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।
1: And hopefully that will be the last of this war of words. With that, we'll slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay with us.

0: have been spoken.
1: Janendra, my colleague now joins me live. Janendra, Rahul Gandhi's words clearly an outreach to Gen Z, but the BJP, one after the other, you have leaders slamming him for his comment.
2: Yes, correct. But as far as Congress is concerned, Congress sources are saying that it is actually Rahul Gandhi who is setting the agenda. And BJP is falling in that trap. Rahul Gandhi quoted Manu Smriti and appealed to the women, girls to break the cages and be independent, be confident, and claim their share in the society, in the development. So, in that context, Rahul Gandhi quoted Manu Smriti, and BJP is targeting him for that, for quoting Manu Smriti. We should not forget that even Manu Smriti is quoted in Dalit politics also, and it is considered as anti-Dalit. Congress is happy that BJP is reacting on the same lines and in trying to corner Rahul Gandhi. Actually, they are reacting on the same agenda in that program in Pune. Rahul Gandhi not only quoted from Anusmriti, but he also played some bites of Prime Minister, RSS Chief, and also GOP Chief Minister, and claimed that like Manu Smriti, these leaders are also patronizing patriarchy. So, in a way, Rahul Gandhi is targeting to appeal Gen Z, appeal the 50% voter, 50% population, that is the women of this country. And likewise, BJP is reacting. They are trying to corner Rahul Gandhi, but Congress is saying that actually the BJP is taking our messages to masses, to women, and in that way the motive of the program is successful.
1: All right, thank you for joining me live. We'll have to wait and watch and see how far this face-off continues between Rahul Gandhi and the BJP. But there's another controversy also brewing. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered another political row. With the event taking place during the month of Sawan, the event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, held to welcome Congress State President Ajay Rai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath hit out of the Congress over fish feast and said, and I'm going to quote him here, who asked them to visit Hanuman Gari? If they wanted to eat fish, they could have simply gone outside Ayodhya to do so. Now, the Congress UP chief, Ajay Rai, has denied allegations of eating fish and said, and I'm going to quote Rai here now, if the chief minister can produce any image of me eating fish, I will resign immediately. Meanwhile, Congress has justified the eating of fish and said, what is wrong in eating fish? And fish is part of the Nishad community tradition.
3: Congress ke log keval विरासत का अपमान ही नहीं करते. कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने ले जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं. बेशर्मी की भी एक सीमा होती है. किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण. गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं.
4: अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है. आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर?
5: देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था राम निहाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गया और वहाँ पे स्वागत समारोह हुआ. स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए. बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था अपने समाज के लिए। तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली, वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए और वहाँ से हम लोग वापस आए। बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था। निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है।
4: अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए?
5: मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं। जब बाद में पूछा, हम लोगों ने सवाल किया तो कहा कटहल खा रहे हैं। साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता, साउथ में फ्रूट के रूप में, फल के रूप में कटहल को खाया जाता है। झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी इनके अपने घर गांव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा।
0: आप ये एक सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में, कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
6: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट, मेरे उस खबर मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने भारतवर्ष में 1926-1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रत दिखा दूंगा। यह निषाद समाज का मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
7: मैं खुद उस प्रोग्राम में कल वहां था। सुबह अजय राय जी और मैं पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके हम श्री राम मंदिर गए, वहाँ हमने प्रार्थना करी कि जितने भी लोग जिन्होंने चंदा चढ़ावे की चोरी करी है, श्री राम भगवान उनको सही सजा दें। उसके बाद वो निषाद कम्युनिटी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम लगभग 3:07 में पहुँचे और 3:50 में हम निकले, क्योंकि वह बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। निषाद कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के उनमें नेता भी हैं, वो मछुआरे लोग हैं, वो मच्छी खाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी निषाद कम्युनिटी के अगेंस्ट है? क्या अजय राय जी ने खाना खाया? क्या राजेंद्र पाल गौतम जी ने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया?
8: कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, मछली तो हर समय खाएगा। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं।
9: बहुत ही दुखद है, अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है।
10: कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धार्मिक नगरी में हो सके तो नॉन वेजिटेरियन फूड से वेलकम ना करें, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने जैसी कार्रवाई है जो उचित नहीं।
11: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं।
1: Moving on to a disturbing incident from the state of Maharashtra, where a fire broke out, a massive fire broke out at the NICU facility of the District Women Hospital in Maharashtra's Amravati, killing 3 infants. The fire reportedly broke out at 3:30 this morning on the third floor after ventilator explosion. At the time, 39 infants were present in the ward. Doctors, nurses and hospital staff quickly disconnected equipment and evacuated the remaining babies from the flame. Six critical infants were shifted to a nearby super speciality hospital, while Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the deaths. Meanwhile, a political blame game has erupted over the incident. NCP-SP faction leader Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence demanding a thorough probe and the strictest action. Congress has questioned the ventilator safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible equipment or electrical faults.
12: मुझे जो जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है ऐसा समझ में आया है और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
13: बर्न इंजरीज कितने बच्चों का है?
12: डिटेल मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊंगा कि कितने बच्चों को है।
13: सर, प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पर आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी, वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
12: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन किया गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेज की गई कि नहीं, क्या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांचने का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीडिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
14: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ, अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
15: अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहाँ पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती, मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है, तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या फिर?
16: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
17: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी, और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है, ये इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: My colleague Sujata now joins me live. Sujata, unfortunately, when it comes to incidents such as the one we're reporting, the political blame game even begins before there's any accountability, really, in such cases. I want to understand from you, where does the interrogation, the investigation stand as we speak?
18: Well, yes, like you mentioned before, the blame game has already begun into this unfortunate incident, and the opposition here is calling this as a civic and a public health infrastructure apathy. Whereas the government on one end has already begun its work, where they have ordered an audit into the electrical tech shift of this entire hospital, as well as because this was a new ward that had been set up. How did the smoke occur? How did it led to this electrical damage is also currently being investigated. What we know so far is that an inquiry has been ordered, a high-level inquiry has been ordered by the authorities to understand and estimate the situation. Whereas, like we know that all of the leaders as well as politicians have already begun visiting the site and expressed their views on the cameras. But again, it is the three infant babies that have lost their life because of this incident that took place into a unit that was newly set up. It was the new infant intensive care unit, the special unit that was set up for these infants. There were a total of 49 infants that were kept in, out of which three lost their lives. Six of them are currently into a special referral hospital. And yet, on one end, the government is trying to assess the situation, and action will be taken accordingly, is what they have assured to the people. And ex gratia too will be announced, is what they have said so far. Back to you.
1: Thanks for joining me live. This is Sujata. We're going to move on now to another disturbing story, a shocking murder case in the state of Haryana, where a woman is accused of killing her husband and then cutting open his abdomen. The post-mortem revealed that Rajesh's abdomen had been cut open to around 35 centimeters. His intestines had come out, while a substantial portion of his liver and right kidney were reportedly missing. His landlord allegedly caught Vimla, the wife, putting the intestines into a bag. She then panicked and jumped from the terrace. She survived the fall and is currently undergoing treatment. Three knives were recovered from the crime scene, and forensic evidence has also been collected. Police are yet to establish the motive and are investigating the couple's relationship, previous disputes, and the circumstances surrounding the killing. In the latest news, Delhi NCR is witnessing heavy spells of rain with waterlogging and traffic snarls reported across several parts of the capital and the national capital region. From Sangam Vihar to Barapulla, vehicles are crawling through waterlogged stretches as the downpour continues. The rain has disrupted daily life, with pedestrians struggling to navigate flooded stretches and shopkeepers dealing with water accumulating outside their establishments. The rain has also disrupted air travel, with 14 flights diverted from the Delhi airport so far.
19: The national capital has been witnessing spells of intense rainfall since the past 1 hour. We are showing you the visuals from Delhi's Janpath area, where you can see that near the Tibet market, in heavy waterlogging can be seen here, which is causing a lot of troubles for the shopkeepers here at this very place. You can clearly see this is not the first time that waterlogging has been reported here. Clearly, the drains have not been desilted, according to some of the shopkeepers who have, whose shop is here. We can speak to some people also. Sir, देख रहे हैं इस तरीके से पानी जम गया है यहाँ पर. पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. कई बार हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं इस तरीके से water logging होता है. कितनी दिक्कत होती है इससे?
20: जी जी, ओहो, दिक्कत, lot of दिक्कत. पानी सड़कों के अंदर, दुकानों के अंदर, छतें टपक रही हैं. कितने साल से हम suffering कर रहे हैं. Nobody care.
21: हर साल दुकान में पानी घुस जाता है. हालांकि इस बार इन लोगों ने सुविधा करी है, नाले में वो पंप वगैरह लगा रखा है, मगर नहीं जा रहा. पंप भी खराब है, एक पंप चल रहा है, बाकी जाम है सारा, पानी जा नहीं रहा.
19: Yeah, this is not the only area where water logging like this is being reported. We're showing you the visuals from Janpath, where we can clearly see knee deep water logging that can be seen in this very area, and people who are struggling to wade through these waters to in fact reach their offices and designated places.
1: On that note, we slip into a short break. News and updates will continue here on Breaking Ground in moments from now. Stay tuned. BJP slams Rahul Gandhi, Uttar Pradesh Chief Minister. Tamil Nadu Chief.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: अक्रॉस द कंट्री
6: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री।

0: levels of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
2: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
3: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaty.
4: Welcome back. Now, some breaking news coming in India has clarified after comments by the US Ambassador Sergio Gore, who said that the Indian side had told them it would prefer not to hold any media interaction. This was when Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump had met in June on the sidelines of the G7 summit. Now, government sources have told NDTV that delegations when meeting the US President are wary about his unpredictable behavior, as may be seen from his interactions with the President of South Africa and Ukraine, etc., and claim that is why the cautious approach was exercised by India, and the US side was told that no interaction with the media after that meeting between Donald Trump and Prime Minister Modi. In fact, Sergio Gore, when he was narrating this incident, then went on to say how he had told President Trump about this, but it seems the president forgot, and that is why after when the media was let into the room, Donald Trump went ahead and said any questions, and then of course there were a barrage of questions. But let's go across to Aditya Raj Kaul for more on this story. Aditya, take us through what the MEA has now said regarding after this admission by Sergio Gore about how the Indian side had asked not to hold any media interaction.
5: Well, firstly, there's no official reaction that has come so far from the government. Ministry of External Affairs has not reacted so far. What we know through government sources is that this is a standard practice, that every time there's a high-level meeting between prime ministers and presidents or bilateral meetings, there is, in fact, a protocol that is followed, VVIP protocol. This means that there will be initial discussions between the two offices on the nature of the talks that will happen, but also the kind of protocol, the kind of media engagement, the kind of questions that will be taken, or whether at all there will be questions that will be taken. In this particular case, this was agreed upon by both sides that no questions will be taken first. And secondly, apart from this standard practice, the government of India has been wary about President Trump's behavior, not just the government of India, but several global leaders, especially after what happened in the White House between the president of Ukraine, Zelensky, and President Trump. The kind of humiliation and embarrassment that the president of Ukraine, Zelensky, had to face. Not just that, in several other meetings, including that from South Africa as well, you had similar kind of situation, and the one-liners or the kind of statements that Trump intends to give on the moment, on the go, is not up to the standard of the diplomatic protocol, really, of the high offices that they belong. So certainly the government was not keen on doing a Q&A at that particular stage. But otherwise, Prime Minister Narendra Modi has engaged in the past with the media in terms of the bilateral meetings that are obviously held. This statement, of course, comes after Sergio Gore's statement at a media event where he said that it was certainly agreed upon by both sides that no questions will be taken. But then Trump went on for a 45-minute press conference. That's the nature of Trump. He does engage with the media on a daily basis. He wants to hold the narrative. But in this particular case, it was agreed upon, and that certainly did not happen.
4: All right, thanks so much for joining us there. Aditya Raj Kaul bringing us what sources in the MEA are and how they're explaining what Sergio Gore has said. Well, the big news out of Maharashtra, a massive fire broke out at the NICU of the District Women Hospital in Amravati. This is the neonatal ICU where babies are kept who were born prematurely, who have some, medical needs. And due to this fire, three newborn babies died. The three infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire broke out at around 3:30 a.m. on the third floor after a ventilator explosion. At the time, 39 infants were present present in the ward. Doctors, nurses, hospital staff quickly disconnected equipment, evacuated the remaining babies from the flames. Six critical infants were shifted to a nearby super speciality hospital. And while Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the deaths, the opposition is hitting out over this, pointing to lapses, saying also that there wasn't adequate firefighting equipment. A political blame game has erupted. NCP-SP leader Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence, demanding a thorough probe and the strictest action. Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago, raising questions over equipment, how there was not enough firefighting equipment or also electrical faults there.
6: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
7: मुझे जो जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है ऐसा समझ में आया है और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए, वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
6: बर्न इंजुरीज कितने बच्चों का है
7: डिटेल? मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊंगा कि कितने बच्चों को है।
6: सर प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पर आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
7: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन किया गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेस की गई कि नहीं, क्या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांचने का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीजिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब CCTV फुटेज वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
8: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
9: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहाँ पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती, मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है, तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
10: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
11: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है
8: वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये, इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
4: Now sandwiched with an unexpected side order of a live worm, a diner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after he'd eaten almost half of his sandwich when he saw that worm

0: is taken negatively. So in that
1: right.
0: sense, also Congress thinks that if BJP is cornering Rahul Gandhi or Manu Smriti, then ultimately in this game, Congress will get benefit, be it Dalit vote sentiments or of the sentiments of the 50% population of the country.
1: All right, so the Congress, they're hitting back at the BJP's criticism of Rahul Gandhi. Thanks so much, Janendra. And let's just listen into what Rahul Gandhi said at that event when he was speaking on the Manu Smriti.
2: Manu Smriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manu Smriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken.
1: And more controversy involving the Congress party. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered a big row, with the event taking place during the month of Sawan. The event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, and it was held to welcome Congress State President Ajay Rai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at the Congress over this and said who asked them to visit Hanuman Gadi. If they wanted to eat fish, they could have simply gone outside Ayodhya to do so. Now, Congress UP Chief Ajay Rai, on his part, has denied allegations of eating fish. He said if Chief Minister can produce any image of him eating fish, he will resign. He's also questioned that, you know, and the Congress has justified the eating of fish, also saying that what is wrong in eating fish, and fish is part of the Nishad community tradition. That is what the Congress leader who organized this, who belongs to the Nishad community, which is a community of fishermen, had to say. Listen in.
3: Congress ke log keval विरासत का अपमान ही नहीं करते. कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं. बेशर्मी की भी एक सीमा होती है. किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण. गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं.
4: अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है. आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर?
5: देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था राम निहाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गए, और वहाँ पर स्वागत समारोह हुआ. स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए. बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था, अपने समाज के लिए. तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली. हाँ. वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं. तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए, और वहाँ से हम लोग वापस आए. बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था. निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है.
4: अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए?
5: मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं. जब बाद में पूछा, सब हम लोगों ने सवाल किया, तो कहा कटहल खा रहे हैं. साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता. साउथ में फ्रूट के रूप में, फल के रूप में कटहल को खाया जाता है. झूठ बोल रहे हैं. ऐसे ही इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है. तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए. नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी इनके अपने घर गांव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा।
6: आप ये एक सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे।

0: पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में, कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा, तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
1: उनके जो बड़े नेता हैं, बंगाल के अंदर मछली खा रहे थे। जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो मछली खाई जा रही थी। हम तो ना मछली खाते ना मांस खाते, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ?
2: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट मेरे उस वक्त बंद करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने नहीं, नहीं, नहीं। भारत वर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा। ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलना चाहते हो। मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
3: मैं खुद उस प्रोग्राम में कल वहाँ था। सुबह अजय राय जी और मैं पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके हम श्री राम मंदिर गए, वहाँ हमने प्रार्थना करी कि जितने भी लोग जिन्होंने चंदा चढ़ावे की चोरी करी है, श्री राम भगवान उनको सही सजा दें। उसके बाद वो निषाद कम्युनिटी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम लगभग 3:07 में पहुँचे और 3:50 में हम निकले, क्योंकि वह बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। निषाद कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के उनमें नेता भी हैं, वो मछुआरे लोग हैं, वो मच्छी खाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी निषाद कम्युनिटी के अगेंस्ट है? क्या अजय राय जी ने खाना खाया? क्या राजेंद्रपाल गौतम जी ने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया?
4: कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, मछली तो हर समय खाएगा। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं।
5: बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता।
6: कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धार्मिक नगरी में हो सके तो नॉन वेजिटेरियन फूड से वेलकम ना करें, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने जैसी कार्रवाई है, जो उचित नहीं।
7: अच्छा, में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं।
8: Alright, moving on to a tragic incident in Maharashtra when a massive fire broke out in the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. This was the neonatal ICU. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted in the early hours around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames, and 6 critically affected infants were then shifted to a nearby super speciality hospital. Now, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe. The health minister announced a special inquiry committee to be headed by the divisional commissioner. But the incident has triggered a political blame game. The opposition has hit out over this, pointing at lapses and lack of firefighting equipment. NCP SP MP Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence and demanded strict action. The Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over the possible firefighting equipment shortage or electrical faults.
9: जो मार जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है, ऐसा समझ में आया है, और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए, वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
10: बर्न इंजुरीज कितने बच्चों का है?
9: डिटेल मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊंगा कि कितने बच्चों को है।
10: सर, प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पे आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी, वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
9: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन किया गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छे क्वालिटी की परचेस की गई कि नहीं, क्या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांचने का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीडिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब सीसीटीवी फुटेज है वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
11: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
12: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है, वो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
13: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
14: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है, ये इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे हो गए तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
10: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलस कर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है, और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है, कुछ को बर्न इंजुरीज है, और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
8: Now another incident involving public health. A chlorine gas leak triggered panic today in Nagpur's Agodhni area, with almost 40 people being hospitalized after being exposed to toxic gas. This leak took place at the Godni Nagar Panchayat water purification plant, affecting both employees who are working at the facility as well as residents living nearby. It was chlorine, which is used in water purification. Around 8 to 10 plant employees, 20 to 25 local residents were among those affected and were taken to hospital for treatment. 4 to 5 people were even admitted in the ICU, while others were undergoing treatment for breathing difficulties and other symptoms following the exposure to the toxic gas.
15: सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहां पर पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए। अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं।
16: एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ये ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाह उनके ऊपर भरोसा मत करो।
17: 40 लोग एडमिट किए गए थे, जिसमें अब तक के 12-13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3 लोग अभी भी आईसीयू में। और पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद रात में 12:30 बजे से कर रही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहा है जो यहाँ पे SDRPF जो यहाँ पे काम कर रही है, तो ये भी रात से यहाँ के सिटीजन्स के लिए काम कर रही है। साथ ही जो OCW है और यहाँ पे फायर NMC, जो NMC का डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, वो भी कर रहा है।
8: News now from Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay announced that the proposed Parandur Airport project will be dropped. This was meant to be Chennai's second greenfield airport. Vijay said he stands with the protesters and mentioned that a new site for the airport will be finalized soon. The move comes amid sustained opposition to the Parandur project, with local residents raising concerns over the proposed site. The decision has also triggered a political clash, with M.K. Stalin questioning the move and stressing the airport's importance for Tamil Nadu's investment and economic growth. The DMK says the airport is crucial for the state's growth, while Vijay maintains that the concerns of the protesters must be addressed.
18: தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கான விமான நிலையங்களின் பங்கு பற்றி நான் நன்கு அறிவேன். அதற்கான என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும், மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தேன். மக்கள் மத்தியிலே நான் அன்றே அறிவித்ததை நிறைவேற்றும் பொருட்டு புதிய விமான நிலையம் அமைப்பது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடமும் துறை வல்லுநர்களிடமும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினேன். ஏற்கனவே நான் உறுதி அளித்தவாறு பரந்தூரில் புதிய விமானம் நிலையம் அமைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இந்த அரசால் கைவிடப்படும்.
19: பரந்தூரிலே நீங்கள் இந்த விமான நிலையத்தை அமைப்பதுதான் மிக சரியானதாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இன்றைக்கு மாற்றும். ஒரு திட்டம் நாட்டுக்கு வருகிற போது அதில் அரசியல் செய்யக்கூடாது. அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதேனும் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும்.
20: He cannot drop it. It is the Civil Aviation Ministry is in the control of the Government of India, not under Tamil Nadu state. And they had procured space and given it to the Civil Aviation Department. Then how can he stop it? He wanted it to be stopped. He should go to Delhi and speak to the people. Ministers, but then finalize it. He cannot announce it. It is the Civil Aviation Ministry which has to announce this.
21: It is true, that's a very bad initiative, because already 70% of the acquisition works and everything has been over. I think they should reconsider it.
22: See, appeasement should not be at the cost of growth of the state. And Mr. Vijay thinks that this will lead him to people glorifying him. It's not so. Already, because of the rampant corruption in the earlier DMK government, industries slowly moved towards their neighboring states. We lost many industries. And this is a serious negative impact that will ripple on the state. a government has to be pro welcoming business houses and ensuring the economy and development of the state. It has to be a holistic development. Government should not work towards appeasement. Andhra has already got another airport near Hosur. And we are losing out on competition. Tamil Nadu, the second largest economy, this will send negative images, negative opinion about the state, that the state is not, the government is not willing for development. This is not the right move.
0: Our Chief Minister has shown, not only to Tamil Nadu, but also to India, he is not a typical politician who shows, says something, does something different. I know it was a difficult decision, but he stood by it. He gave a word and stood by it. Now, that shows leadership and commitment to the word given. He has been consistently trying to keep up all his electoral promise in spite of difficult financial situation. Having said that, he also is not a guy who shuns away from his responsibility. Our Chief Minister has shown that he can do what other people thought is undoable and have been proving it consistently in terms of fighting corruption. Now, he will also do that. The timing he will know. At this time, whatever he has said, we see a consistent pattern. He says something and doesn't talk much, but does it.
1: This is most unfortunate and it is going to be a very big setback for Tamil Nadu's prosperity. And the economy, will definitely go down and many investors may not come because it will take at least a decade to build a beautiful airport, a green airport like this. And, Karnataka, particularly Bengaluru and Hyderabad and even Andhra Pradesh, which is trying to get a big airport, are going to benefit because of this decision. This decision is a very bad decision and it's a very important and very worst political decision taken by TVK. I think they have misguided totally in this issue. I strongly condemn this because Tamil Nadu's economical growth will definitely go down compared to other southern states.
8: And staying with news of Tamil Nadu and TVK, after TVK stepped up its pitch for Vijay as a potential prime ministerial face, with party leaders projecting him for a larger national role, our former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin lashed out at Vijay and said that change in Tamil Nadu government has ended in disappointment and this situation needs to be changed. This comes after Tamil Nadu ministers have said that Vijay is headed towards the national political stage, signalling confidence in his growing political profile. This has also made ally Congress uncomfortable. Congress has also pushed back against TVK's Vijay for PM pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next prime minister and taking aim at the party's growing national ambitions.
2: In the Nalai, Baruvarikku Karanamaga Irundhathai, Yaar Enbadhai, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறியிருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
23: எல்லா பார்ட்டிக்கும் கனவு, அம்பிஷன், ஆசை உண்டு. அதுக்கு ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு சட்டம்லாம் போட முடியாது. அவங்கவுங்க விருப்பத்தை அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறாங்க, அவங்க கட்சியில அவங்க அவங்களுடைய அபிமானிய தலைவரை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும்.
24: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
25: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
26: ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அதை நோக்கி பயணம்.
3: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
8: And staying with news from Tamil Nadu, a viral video has triggered a political row after it was wrongly claimed to show Minister S. Kirtana. Now, the minister denied being the woman in the video, who can be seen in a short black dress, but she also hit back at this trolling, calling it a regressive mindset, alleging that political opponents are manufacturing a narrative, also calling misogyny the oldest weapon of those who have nothing substantive to positively contribute. Kirtana said a woman's appearance should not be subjected to public trial. She also questioned why there was this political hysteria over the video on social media, and directly addressing the woman in the video, the Tamil Nadu minister said, "You look stunning," adding that she got dragged into this simply due to a passing resemblance. The DMK has also reacted to this and, you know, tried to deny that they were involved in that trolling, in fact slamming the trolling, calling it an attempt to degrade women.
4: போட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இது யார் என்று தெரியுறதா? எதுல இபிஎஸ் 24/7 ஒரு அபிஷியல் பேஜ். ஒரு பெண்ணை எப்படியெல்லாம் இழிவுபடுத்த முடியுமோ, திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி இப்ப இன்டர்நெட் எல்லாம் இப்படிதான் போடுறாங்க.
8: Now, a shocking murder case that's taken a disturbing turn after human body parts were found inside a suitcase on a train in Agra. The police now identified the victim as a 38-year-old Hayuthan Nisha, a native of Odisha. And investigators say that she was allegedly murdered and then her body was chopped up before the remains were put into this red suitcase and put on a train from Chennai to Delhi. CCTV footage has helped identify two suspects, Manik Udin Laskar and Bhagavati Maji, the two people who were seen on CCTV with that same red suitcase. Investigators have then traced the suspects to a house in Chennai where more decomposed body parts were allegedly found. The two suspects are said to be on the run now. The police are investigating the motive and using forensic evidence to establish whether all the recovered remains belong to the same victim. And the police in Odisha has also been contacted. With that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: second changes everything. A minute moves a nation.
1: रंग बना रहे बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: என்பதை யார் என்பதை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறி இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
1: எல்லா பார்ட்டிக்கும் கனவு, அம்பிஷன், ஆசை உண்டு. அதுக்கு ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு சட்டம்லாம் போட முடியாது. அவங்கவுங்க விருப்பத்தை அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறாங்க, அவங்க கட்சியில் அவங்க அவங்களுடைய அபிமானிய தலைவரை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும்.
2: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவல்ல, நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
3: And shifting our focus to other stories, a viral video has triggered a political row in Tamil Nadu after it was wrongly claimed to show Minister S. Kirthana. The minister has now denied being the woman in the video, who could be seen in a short black dress, but she also hit back at the trolling, calling it a regressive mindset and alleging that political opponents are manufacturing a narrative and calling misogyny the oldest weapon of those who have nothing substantive to positively contribute. Kirthana said that a woman's appearance should not be subjected to public trial and questioned why there was political hysteria over the video. She also directly addressed the woman in the video. The Tamil Nadu minister said, "You look stunning," and she dragged into this simply due to a passing resemblance. "No one has right to abuse or demean," that's what she said. The DMK has also slammed the trolling, calling it an attempt to degrade women. And she says DMK stands for women's rights and dignity.
4: Video podranga na ore oru nimisham kaamichiren adhu poi pracharam na eppadi la vandu saadhikalam appdi nenachu ippa thenam sani yerna avangala velaiye irudhan innikku na poi pracharatha kaamikiren neengale sirupinga yaar podrukka theriyuma idhu eps 24/7 blue tick oda vandu podranga yaro oru ponnu indha maari oru aragara dress potittu car la yerranga இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இது யார் என்று தெரியிறதா? எதுல இபிஎஸ் 24/7 ஒரு அபிஷியல் பேஜ். ஒரு பெண்ணை எப்படியெல்லாம் இழிவுபடுத்த முடியுமோ, திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி இப்ப இன்டர்நெட் எல்லாம் இப்படிதான் போடுறாங்க.
3: Meanwhile, a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion, with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. 6 critically affected infants were shifted to a nearby speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has now ordered a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by the Divisional Commissioner. The incident has also triggered a political blame game as we speak. NCP SP MP Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago, and also raising questions over possible firefighting equipment shortage or electrical faults as well.
5: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है, और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
6: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
0: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या फिर?
3: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back, folks. We'll line up for you here on Prime 5.

0: vote bank in the state of Uttar Pradesh. The Congress quoting saying that this is their food of choice, while the BJP says, look, they have hurt the Hindu sentiments.
1: अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है। आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर?
2: देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था रामलीला निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गया, और वहाँ पर स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए, बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था अपने समाज के लिए। तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली, वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए, और वहाँ से हम लोग वापस आए। बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था। निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है।
1: अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए?
2: मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं। जब बाद में पूछा, सब हम लोगों ने सवाल किया, तो कहा कटहल खा रहे हैं। साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता, साउथ में फ्रूट के रूप में, फल के रूप में कटहल को खाया जाता है। झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी, इनके अपने घर गाँव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा।
3: कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं।
0: Now, it all started with a plate of fish, but it has come down to the vote bank of the Nishad community, which is very, very important in the state of Uttar Pradesh. The Nishads, Mallas and the Kewats are about 4.3% of the population as far as Uttar Pradesh is concerned. 20 subcastes linked to Nishads. The Nishad-linked caste are about 15% of the overall OBC umbrella in Uttar Pradesh. The Nishad vote impacts about 120 assembly seats, and this is where it becomes important. They hold sway in eastern Uttar Pradesh, key, in fact, vote bank in Ayodhya, Gorakhpur, Mirzapur, even in Varanasi, influential in Varanasi, Prayagraj, Balia. The NDA currently holds the Nishad vote edge, at least if you compare it to the last election. The Congress and Samajwadi Party have stepped up their outreach to the Nishad community. And with this controversy, there could be, of course, hope, at least for the opposition, that the Nishad vote is going to shift towards the opposition in the upcoming election. Gauri Dwivedi, Executive Editor, NDTV, continues to be with us. Gauri, I always find it fascinating how politicians are able to make what is on your plate one of the important talking points. But the fact is, from what is on your plate to the important Nishad vote bank, how do you see this playing out? Because BJP at this moment, like from reservation, also is at a risk of annoying this very important vote bank which has backed them.
4: The delicate caste balance, and Ankit, it's right when you say that what you're eating should be nobody's business, but then you have to understand the larger political landscape as far as UP is concerned. In Ayodhya, there is a rule that within the 15 kilometer

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: सुबह
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा प्योर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: कैपिटल इनोवेशन लीडरशिप, The three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI, from bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
5: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
1: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा और कोई दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
2: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
3: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
4: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries, these are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country. Gurugram, the millennium city, was once again struggling with a familiar problem on Monday. heavy rain, waterlogged roads and massive traffic jams. After the mess that was witnessed yesterday, authorities have advised people to work from home today, while several schools have shifted

0: The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. Six critically affected infants were shifted to a nearby super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP-SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
1: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री वीमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इसी में आग लगने से तीन बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से तीन बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है, और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और तीन बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
2: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
3: कल अमरावती में तीन छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
4: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
0: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries. These are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised

0: इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स।
1: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री वीमेन हॉस्पिटल है वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
2: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा और कोई दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
3: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहाँ पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
4: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
0: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries, these are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country.

0: triggers fire at Maharashtra's Amravati Hospital. Critical safety risk ignored. Chief Minister assures high-level probe. Tamil Nadu Chief Minister Vijay's big decision. He drops the Parandur airport plan, says stands firmly with protesters. DMK, meanwhile, has lashed out at the BJP government, calling it an irreversible setback. Just 1 hour of rain exposes Gurugram's civic infrastructure again. Roads have been waterlogged, buses have been submerged, and the street outside most prime property in the city has been fully flooded. India's twin diplomatic push. External Affairs Minister S. Jaishankar meets Putin, who hails Prime Minister Modi's attention to bilateral ties. Meanwhile, NSA Ajit Doval is set for dialogue in China, with border stability, de-escalation on the agenda. Starting the edition with the day's top story, Rahul Gandhi's call to smash the patriarchy has triggered a political war of words between the Congress Party and the BJP. Speaking at his Chhatro Ki Goonj event on the 22nd of August, Rahul Gandhi said, "Patriarchy suppresses and controls women." He called for an end to the system and urged women to be loud, proud and fight for their space in society. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, has questioned Rahul Gandhi and his call to smash the patriarchy, and asked that, does a daughter not need a father or a sister not need a brother? The BJP has also challenged Rahul's support to 33% of the women's reservation law and questioned Karnataka government for having no women in the cabinet. Congress countered BJP by alleging that RSS had opposed the constitution and advocated for Manusmriti.
1: Main bhi pichle dino is Rae Bareilly ke sansad श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था. उनका बयान ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं. राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है. आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं.
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: राहुल गांधी शुड फर्स्ट ट्रैश द हिपोक्रेसी बिफोर ही वैक्सेस एलोक्वेंट स्लोगन्स लाइक smash the patriarchy, because the track record of the Congress party is really dismal when it comes to women empowerment. There are zero women ministers in both Karnataka and Himachal Congress-led governments.
4: How many women have been presidents of the BJP? Give me one name. We've had 5 women presidents. We gave the first woman prime minister. We gave the first woman president in this country. So please ask them to shut up, number one. Number two, who pioneered, championed the cause of women's reservation in parliament? Sonia ji. Kept writing letters, kept fighting for it, kept building consensus when we were in power. 2023, because of all these efforts, the women's bill got passed in the parliament September 20th and 21st in Lok Sabha and Rajya Sabha, and then went to the president. From 2023 to April 2026, the BJP kept sitting on the bill, didn't even notify. Why? Now, this shows the intention.
0: Let's in fact now listen in to what Rahul Gandhi said on Manusmriti during his Pune student outreach that created a massive political row.
5: Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken.
0: And now on to stories that we're tracking from the down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has announced that the proposed Parandur Airport project will be dropped. This was meant to be Chennai's second greenfield airport. Chief Minister of Tamil Nadu Vijay has said that he stands with the protesters and that he mentions that a new site for the airport will be finalized very soon. The move, remember, comes amid sustained opposition to the Parandur project, with local residents from that area raising concerns over the proposed site. The decision has triggered a political clash within the DMK and the TVK, with MK Stalin questioning the move and stressing that airport's importance for Tamil Nadu's investment and economic growth. The DMK has said that the airport is crucial for the state's growth, while Vijay maintains that the concerns of protesters must be addressed.
6: தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கான விமான நிலையங்களின் பங்கு பற்றி நான் நன்கு அறிவேன். அதற்கான என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும், மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தேன். மக்கள் மத்தியிலே நான் அன்றே அறிவித்ததை நிறைவேற்றும் பொருட்டு புதிய விமான நிலையம் அமைப்பது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடமும் துறை வல்லுநர்களிடமும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினேன். ஏற்கனவே நான் உறுதி அளித்தவாறு பரந்தூரில் புதிய விமானம் நிலையம் அமைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இந்த அரசால் கைவிடப்படும்.
7: பரந்தூரிலே நீங்கள் இந்த விமான நிலையத்தை அமைப்பதுதான் மிக சரியானதாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இன்றைக்கு மாற்றுவோம். ஒரு திட்டம் நாட்டுக்கு வருகிற போது அதில் அரசியல் செய்யக்கூடாது. அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதேனும் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும்.
8: He cannot drop it. It is the Civil Aviation Ministry is in the control of the Government of India, not under Tamil Nadu State. And they had procured space and given it to the Civil Aviation Department. Then how can he stop it? He wanted it to be stopped. He should go to Delhi and speak to the people, ministers, but then finalize it. He cannot announce it. It is the Civil Aviation Ministry which has to announce this.
9: It is true, that's a very bad initiative, because already 70% of the acquisition works and everything has been over. I think they should reconsider it.
0: And with that, there is another issue that's making headlines in the state of Tamil Nadu. This is about TVK's pitch to make Chief Minister Vijay the Prime Minister in 2029. Well, after TVK has stepped up its pitch for Vijay as a potential prime ministerial face, with the party leaders projecting him for a larger national role, former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has lashed out as Chief Minister Vijay and said that the change in Tamil Nadu government has ended in disappointment and that this situation needs to be changed. This comes after Tamil Nadu ministers have said that Vijay is headed towards a national political stage, signalling confidence in his growing political profile. Congress has also pushed back against Vijay's and against TVK's Vijay for Prime Minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next Prime Minister and taking aim at party's growing national ambitions.
10: In the Nalai, Baruvarikku Karanamaga Irundhathai, Yaar Enbadhai, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறி இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
11: எல்லா பார்ட்டிக்கும் கனவு அம்பிஷன் ஆசை உண்டு, அதுக்கு ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு சட்டம்லாம் போட முடியாது. அவங்கவுங்க விருப்பத்தை அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறாங்க, அவங்க கட்சியில் அவங்க அவங்களுடைய அபிமானிய தலைவரை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும்.
12: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவல்ல, நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
13: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
14: இன்றைய சிஎம், வருங்கால பிஎம் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர். எந்த ஒரு மாற்றுகிறது கிடையாது. ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அதை நோக்கி பயணிப்போம். வருங்கால பிஎம் அவர்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் என்பதையும்.
0: From the state of Tamil Nadu, let's now tell you what's happening in Uttar Pradesh. A fresh political showdown is brewing over the issue of caste-based reservation in Uttar Pradesh. A group of students and youth staged a protest at Jantar Mantar demanding changes to the existing reservation system. But the protest has now triggered a sharp political clash. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak has met the protesting students and backed their right to raise concerns, but the opposition has strongly objected to the government's outreach to the protesters. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said that reservation is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
15: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
16: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
0: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. 6 critically affected infants were shifted to a nearby super specialty hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
17: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है, कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
18: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
19: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
20: हायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
0: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries, these are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country. Gurugram, the millennium city, was once again struggling with a familiar problem on Monday. heavy rain, waterlogged roads and massive traffic jams. After the mess that was witnessed yesterday, authorities have advised people to work from home today. While several schools have shifted classes online, an hour of intense rain was enough to bring several parts of the city to a standstill today. School buses were stranded with children who were there that were stuck for hours before being rescued, while some students were forced to wade their way through the flooded roads. And these visuals from outside the DLF Magnolia show how badly the rain has once again exposed Gurugram's drainage and civic infrastructure as well. Here is a reaction that's coming in on that story.
1: It is an absolute shame that all of us who live in Gurgaon live in the most pitiable state. We live in a state of absolute miserableness. There are floods every monsoon, and every monsoon promises are made by every government, by every municipal official, that, oh, things will be sorted. It doesn't happen. You have no municipal officers available. You have no corporation officials available. You have traffic which is in the worst possible state. And this repeats itself year after year.
0: And well, 1 hour of rain and Gurugram comes to a standstill. Roads turn into rivers, traffic crawls, and residents are once again forced to battle waterlogging. This is the Millennium City, home to some of country's biggest corporate offices and among India's highest income urban cities. So why does a city that has spent rupees 503 crore on drainage infrastructure in 9 years continue to flood every monsoon? Here's our report.
21: Just 1 hour of rain was enough to bring the large parts of Gurugram to a standstill. Waterlogged roads, long traffic jams. For residents, this is no longer an exception. It has become an annual monsoon ritual. And the big question is, why? Especially when Gurugram has spent a staggering 503 crore rupees over 9 years up to 2025, specifically on revamping its drainage infrastructure. One part of the answer lies in Gurugram's geography. The city sits in a natural basin. During heavy rains, storm water flows down rapidly from the surrounding Aravali Hills, eventually converging on the urban plains. And when that enormous volume of water reaches a city's drainage network, the system struggles to cope. A major pressure point is the Badshahpur drain. It is meant to carry away large volumes of storm water, but during intense rainfall, the inflow can exceed its carrying capacity. The result? Water spills out of the drainage system, flooding roads, entering residential areas, and leaving commuters stranded. Then there is the city's rapid concretization. Gurugram's 2031 master plan envisages almost 60% of the city covered in concrete. The more land gets paved over, the less rainwater can seep naturally into the ground. And despite years of recurring waterlogging, the response has often remained reactive. For Gurugram's residents, the problem is no longer simply the rain. It is the failure to prepare for rain that comes every year. Bureau Report, NDTV.
0: With that, it's time for us to slip in a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: residents from that area raising concerns over the proposed site. The decision has triggered a political clash within the DMK and the TVK, with MK Stalin questioning the move and stressing that airport's importance for Tamil Nadu's investment and economic growth. The DMK has said that the airport is crucial for the state's growth, while Vijay maintains that the concerns of protesters must be addressed.
1: தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கான விமான நிலையங்களின் பங்கு பற்றி நான் நன்கு அறிவேன். அதற்கான என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தேன். மக்கள் மத்தியிலே நான் அன்றே அறிவித்ததை நிறைவேற்றும் பொருட்டு புதிய விமான நிலையம் அமைப்பது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடமும் துறை வல்லுநர்களிடமும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினேன். ஏற்கனவே நான் உறுதி அளித்தவாறு பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இந்த அரசால் கைவிடப்படும்.
2: பரந்தூரிலே நீங்கள் இந்த விமான நிலையத்தை அமைப்பதுதான் மிக சரியானதாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இன்றைக்கு மாற்றும். ஒரு திட்டம் நாட்டுக்கு வருகிற பொழுது அதில் அரசியல் செய்யக்கூடாது. அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதேனும் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும்.
3: He cannot drop it. It is the, see, Civil Aviation Ministry is in the control of the Government of India, not under Tamil Nadu State. And they had procured space and given it to the Civil Aviation Department. Then how can he stop it? He wanted it to be stopped. He should go to Delhi and speak to the people, ministers, but then finalize it. He cannot announce it. It is the Civil Aviation Ministry which has to announce this.
4: It is true, that's a very bad initiative, because already 70% of the acquisition works and everything has been over. I think they should reconsider it.
0: And with that, there is another issue that's making headlines in the state of Tamil Nadu. This is about TVK's pitch to make Chief Minister Vijay the Prime Minister in 2029. Well, after TVK has stepped up its pitch for Vijay as a potential prime ministerial face, with the party leaders projecting him for a larger national role, former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has lashed out as Chief Minister Vijay and said that the change in Tamil Nadu government has ended in disappointment and that this situation needs to be changed. This comes after Tamil Nadu ministers have said that Vijay is headed towards a national political stage, signalling confidence in his growing political profile. Congress has also pushed back against Vijay's and against TVK's Vijay for Prime Minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next Prime Minister and taking aim at party's growing national ambitions.
5: In the Nalai, Baruvarikku Karanama Hirdhari, Yaar Enbari, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறி இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
6: எல்லா பார்ட்டிக்கும் கனவு, அம்பிஷன், ஆசை உண்டு. அதுக்கு ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு சட்டம்லாம் போட முடியாது. அவங்கவுங்க விருப்பத்தை அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க கட்சியில் அவங்க அவங்களுடைய அபிமானிய தலைவரை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஆனால் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும்.
7: இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க, எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
8: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
9: ஒவ்வொரு நாளையும் சேர்ந்து அதை நோக்கி பயணிப்போம். மறுநாள் பிஎம் அவர்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்.
0: From the state of Tamil Nadu, let's now tell you what's happening in Uttar Pradesh. A fresh political showdown is brewing over the issue of caste-based reservation in Uttar Pradesh. A group of students and youth staged a protest at Jantar Mantar demanding changes to the existing reservation system. But the protest has now triggered a sharp political clash. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak has met the protesting students and backed their right to raise concerns. But the opposition has strongly objected to the government's outreach to the protesters. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said that reservation is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
9: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
10: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
0: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing three newborn babies. The three infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. Six critically affected infants were shifted to a nearby super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP-SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
11: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से तीन बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से तीन बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और तीन बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
12: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
13: कल अमरावती में तीन छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
14: हायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
0: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries, these are international food chains, five-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country. Gurugram, the Millennium City, was once again struggling with a familiar problem on Monday. Heavy rain, waterlogged roads and massive traffic jams. After the mess that was witnessed yesterday, authorities have advised people to work from home today. While several schools have shifted classes online, an hour of intense rain was enough to bring several parts of the city to a standstill today. School buses were stranded with children who were there that were stuck for hours before being rescued, while some students were forced to wade their way through the flooded roads. And these visuals from outside the DLF Magnolia show how badly the rain has once again exposed Gurugram's drainage and civic infrastructure as well. Here is a reaction that's coming in on that story.
15: It is an absolute shame that all of us who live in Gurgaon live in the most pitiable state. We live in a state of absolute miserableness. There are floods every monsoon, and every monsoon promises are made by every government, by every municipal official, that, oh, things will be sorted. It doesn't happen. You have no municipal officers available. You have no corporation officials available. You have traffic which is in the worst possible state. And this repeats itself year after year.
0: And well, 1 hour of rain and Gurugram comes to a standstill. Roads turn into rivers, traffic crawls, and residents are once again forced to battle waterlogging. This is the Millennium City, home to some of country's biggest corporate offices and among India's highest income urban cities. So why does a city that has spent rupees 503 crore on drainage infrastructure in 9 years continue to flood every monsoon? Here's our report.
16: The Just 1 hour of rain was enough to bring the large parts of Gurugram to a standstill. Waterlogged roads, long traffic jams. For residents, this is no longer an exception. It has become an annual monsoon ritual. And the big question is, why? Especially when Gurugram has spent a staggering 503 crore rupees over 9 years up to 2025, specifically on revamping its drainage infrastructure. One part of the answer lies in Gurugram's geography. The city sits in a natural basin. During heavy rains, storm water flows down rapidly from the surrounding Aravali Hills, eventually converging on the urban plains. And when that enormous volume of water reaches a city's drainage network, the system struggles to cope. A major pressure point is the Badshahpur drain. It is meant to carry away large volumes of storm water, but during intense rainfall, the inflow can exceed its carrying capacity. The result? Water spills out of the drainage system, flooding roads, entering residential areas, and leaving commuters stranded. Then there is the city's rapid concretization. Gurugram's 2031 master plan envisages almost 60% of the city covered in concrete. The more land gets paved over, the less rainwater can seep naturally into the ground. And despite years of recurring waterlogging, the response has often remained reactive. For Gurugram's residents, the problem is no longer simply the rain. It is the failure to prepare for rain that comes every year. Bureau Report, NDTV.
0: With that, it's time for us to slip in away. Quick break. Don't go anywhere. News and update. Continue on the other side.
17: Across the country. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.